सुबड़ अवसर सुबड़ अवसर नर्भिक अस्पताल तथा काठमाडौं डायबिटीज तथा थायराइड सेन्टर का वरिष्ठ इंडोक्राइनोलॉजिस्ट डाक्टर किरण आचार्य अब देखि प्रत्येक महीना को तेस्रो शनिवार एसजेएस फार्मेसी तथा दीपमाला लाइफ केयर सेन्टर में आई रहने उपचार होने समस्या मधुमेह सुगर रोग थाइ

0: कला देवी सुनचाली पसल धादिंग बेसी पुच्छार बजार
1: प्रोपाइटर अनिल सुनार सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 71 79 70 र 9860 22 26